0: अभी आप श्यामा संगीत सुन रहे थे। कलाकार थे सौरव मायती। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हिंदुस्तानी भक्ति संगीत का एक कार्यक्रम। भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम के समापन अंश में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं नमिता भट्टाचार्य का गाया ये श्यामा संगीत। तो आइए सुनते हैं ये श्यामा संगीत, कलाकार नमिता भट्टाचार्य।
1: You were listening to Shyama Sangeet. Our artist was Saurav Maiti. Concluding the program, we now present Shyama Sangeet. Our artist is Namita Bhattacharya.

0: हिंदुस्तानी भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम में अभी आप श्यामा संगीत सुन रहे थे। आज ही कलाकार थी नमिता भट्टाचार्य। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 2400 घंटे 7 दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी भक्ति संगीत।
1: यू वर लिस्निंग टू श्यामा संगीत। अवर आर्टिस्ट वॉज नमिता भट्टाचार्य। This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH, anytime Indian music.

ಏನ್ ದಾ ಏನ್ ದಾ ಏನ್.

Sama bada ni de sa ni da ba ma bada ni de.

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग भाटियार में ख्याल गायन सुन रहे थे। आज की कलाकार थी मीता हल्दर। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे पिनाकी चक्रवर्ती। ये है रागम, 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम को जारी रखते हुए हिंदुस्तानी शास्त्रीय

0: संगीत के तहत अब हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं राग भैरवी में सरोद वादन। आज के कलाकार हैं परमंथ मोहन टैगोर, आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं सुरजीत साहा।
1: यू वर लिसनिंग टू अ ख्याल इन द राग भाटियार। आवर आर्टिस्ट वॉज मीता हलदार। अकंपनिंग हर ऑन द तबला वॉज पिनाकी चक्रवर्ती। This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. Continuing the concert, we now present a sarod recital. Listen to the sarod in the rag Bhairavi. Our artist is Paramantha Mohan Tagore. Accompanying him on the tabla is Surajit Saha.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग भैरवी में सरोद वादन सुन रहे थे। आज एक कलाकार थे परमंत मोहन टैगोर, आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे सुरजीत साहा। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You were listening to a sarod recital in the rag Bhairavi. Our artist was Paramantha Mohan Tagore. Accompanying him on the tabla was Surajit Saha. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: नमस्कार श्रोताओं, आपने ट्यून किया है रेडियो चैनल रागम 2400 घंटे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. आप सभी का कार्यक्रम में हम हार्दिक स्वागत करते हैं. प्रस्तुत है उपशास्त्रीय गायन.

कलाकार हैं पंडित छोटा गंधर्व। आइए इस कार्यक्रम के आरंभ में सुनते हैं पंडित छोटा गंधर्व का गाया हुआ दादरा, जो बन मद भरी चली नहीं ऐसी नार सज के आई। आपके साथ हारमोनियम पर है बाल माटे, तबले पर विठल क्षीरसागर और वायलिन पर फैयाज हुसैन। सुनते हैं पंडित छोटा गंधर्व का गाया हुआ दादरा।

हुसैन। इसके बाद आइए सुनते हैं पंडित छोटा गंधर्व की गायी हुई ठुमरी बिन बादल बिजुरी कहाँ चमके। हारमोनियम पर है संजय देशपांडे, तबले पर विनायक थोरात और वायलिन पर फैयाज हुसैन। पंडित छोटा गंधर्व की गायी हुई ठुमरी बिन बादल बिजुरी कहाँ चमके।

श्रोताओं हम सुन रहे थे पंडित छोटा गंधर्व का गाया हुआ दादरा। आपके साथ हारमोनियम पर थे बाल माटे, तबले पर थे विठ्ठल क्षीरसागर और वायलिन पर फैयाज।

हम सुन रहे थे पंडित छोटा गंधर्व की गाई हुई ठुमरी। हारमोनियम पर थे संजय देशपांडे, तबले पर थे विनायक थोरात और वायलिन पर फैयाज हुसैन। इसके बाद आइए सुनते हैं पंडित छोटा गंधर्व के स्वर में दादरा, मोरे राजा कीवड़िया खोलो रस के बूंदन पड़े। आपके साथ हारमोनियम पर है श्रीराम शाहपुरकर, तबले पर चंद्रकांत कामत और वायलिन पर फैयाज हुसैन। सुनते हैं दादरा, कलाकार पंडित छोटा गंधर्व।

हम अभी सुन रहे थे पंडित छोटा गंधर्व का गाया हुआ धाधरा। आइए इसके बाद अब सुनते हैं पंडित छोटा गंधर्व की गाई हुई ठुमरी कहेरी ननदिया मारे बोल। आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं श्री राम शाहपुरकर, तबले पर है चंद्रकांत कामत और वायलिन पर है फैयाज हुसैन।

उपशास्त्रीय गायन के कार्यक्रम में हम सुन रहे थे ठुमरी, कलाकार थे पंडित छोटा गंधर्व। आपके साथ हारमोनियम पर थे श्रीराम शाहपुरकर, तबले पर थे चंद्रकांत कामत और वायलिन पर थे फैयाज हुसैन। ये आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मित थी। 24/7 DTH चैनल पर भारतीय संगीत हर पल हर समय आपके साथ।

0: This is Ragam, 21st DTH, Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है उस्ताद लक्ष्मण दास सिंधु का उपशास्त्रीय गायन. पहले प्रस्तुत है राग तिलंग में ठुमरी. बोल हैं सांवरे सलोने मोरे श्याम. तबले पर आपकी संगति की है हशमत अली खाने.
2: दिस इज अ रागम चैनल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो. In the program of light music, we now present a vocal rendition by Ustad Lachman Das Sindhu. First, listen to Thumri in Raag Tilang. The words are Saanvre Lone More Sham, is accompanied by Hashmat Ali Khan on tabla.

0: अभी आप सुन रहे थे राग तिलंग में ठुमरी, और अब पेश है मुल्तानी काफी, बोल हैं वा वे सजन।
1: यू विल लिंक ठुमरी इन राग तिलंग एंड नाउ लिसन टू मुल्तानी काफी। द वर्ड्स आर वा वे सजन।

0: उस्ताद लक्ष्मण दास सिंधु का गाया राग मुल्तानी काफी अभी आप सुन रहे थे, और अब सुनिए मिश्र काफी ठुमरी। बोल हैं ना ही पड़े मोसे चैन। अगले पर आपकी संगति की है हशमत अली खान ने।
1: यू वर लिसनिंग टू अ वोकल रेंडिशन इन राग मुल्तानी काफी। नाउ लिसन टू ठुमरी इन राग मिश्र काफी। दर्ज़ार ना ही पड़े मोसे चैन, अकंपनीड बाय हशमत अली खान ऑन तबला।

0: अभी आप सुन रहे थे उस्ताद लक्ष्मण दास सिंधु का गाया राग मिश्र काफी में ठुमरी, और अब सुनिए सूफियाना कलाम। रचना बाबा बुल्ले शाह की है, बोल हैं की जाना मैं कौन।
1: यू आर लिसनिंग टू ठुमरी इन राग मिश्र काफी एंड नाउ लिसन टू सूफियाना कलाम। इट्स कंपोज्ड बाय बाबा बुल्ले शाह। द वर्ड्स आर की जाना मैं कौन।

0: अभी आप सुन रहे थे ये सूफियाना कलाम, और लीजिए अब प्रस्तुत है उस्ताद लक्ष्मण दास सिंधु का गाया राग मिश्र पीलू में ठुमरी। बोल हैं संया बोलो मोसे तनक।
1: यू आर लिसनिंग टू सूफियाना कलाम। नाउ लिसन टू ठुमरी इन राग मिश्र पीलू बाय उस्ताद लक्ष्मण दास सिंधु। द वर्ड्स आर संया बोलो मोसे तनक।

0: अभी आप उस्ताद लक्ष्मण दास सिंधु का गाया राग मिश्र पीलू में ठुमरी सुन रहे थे, और अब सुनिए दादरा बोल हैं मैंने लाखों के बोल सहे।
1: यू वर लिसनिंग टू ठुमरी इन राग मिश्र पीलू एंड नाउ लिसन टू दादरा द वर्ड मैंने लाखों के बोल सहे।

0: उस्ताद लक्ष्मण दास सिंधु का गाया ये दाद भी आप सुन रहे थे। और अब सुनिए राग मिश्र तिलंग में ठुमरी। बोल हैं अब के सावन घर आजा।
1: यू वर लिसनिंग टू दादरा एंड नाउ लिसन टू ठुमरी इन राग मिश्र तिलंग। द वर्ड्स आर अब के सावन घर आजा।

0: उस्ताद लक्ष्मण दास सिंधु का गाया राग मिश्र तिलंग में ठुमरी अभी आप सुन रहे थे, और अब सुनिए दादरा बोल है दिल की ये नजर का निशाना हुआ।
1: यू वर लिसनिंग टू ठुमरी इन राग मिश्र तिलंग बाय उस्ताद लक्ष्मण दास सिंधु। नाउ लिसन टू दादरा, द वर्ड्स आर दिल की ये नजर का निशाना हुआ।

0: अभी आप उस्ताद लक्ष्मण दास सिंधु का उपशास्त्रीय गायन सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी हशमत खान ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: इन द प्रोग्राम ऑफ लाइट म्यूजिक यू वर लिसनिंग टू अ वोकल रेंडिशन बाय पंडित लक्ष्मण दास सिंधु। ही वाज अकंपनीड बाय हशमत अली खान ऑन तबला। दिस प्रोग्राम इज द प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: नमस्कार, रागम 2400 घंटे श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत. कार्यक्रम में सुनते हैं मिश्र वाद्य संगीत. प्रारंभ में सुनते हैं सरोद वादन. कलाकार है पंडित तेजेंद्र मुजुमदार. आपने सरोद पर प्रस्तुत किया राग जय जयवंती. सुनते हैं विलंबित गत 6 ताल में निबद्ध है और द्रुत गत 3 ताल में निबद्ध है. आपके साथ तबले पर है पंडित योगेश समसी. तो आइए सुनते हैं सरोद पर राग जय जयवंती, कलाकार पंडित तेजेंद्र मुजुमदार.

अभी आप सुन रहे थे सरोद वादन, कलाकार थे पंडित तेजेंद्र मुजुमदार, आपके साथ तबले पर थे पंडित योगेश समसी। और अब कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं जलतरंग वादन, कलाकार है मिलिंद तुलाणकर। आपने जलतरंग पर प्रस्तुत किया राग मधुकंस, सुनते हैं।

अभी आप सुन रहे थे मिलिंद तुलानकर द्वारा प्रस्तुत जलतरंग पर राग मधु कंस। ये आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मित थी। रागम 2400 घंटे हर पल हर समय आपके साथ।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: यह रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत लीजिए प्रस्तुत है राग दरबारी कनाड़ा पर सितार वादन. कलाकार हैं काजल.

0: चट्टोपाध्याय आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं मौलोय बासु। तो लीजिए प्रस्तुत है राग दरबारी कनाड़ा पर सितार वादन, कलाकार हैं काजल चट्टोपाध्याय।
1: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। दिस इवनिंग वी प्रेजेंट अ हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंटल रिसाइटल। लिसन टू अ सितार रिसाइटल इन द राग दरबारी कनाड़ा। Our artist this evening is Kajol Chattopadhyay. Accompanying our artist on the tabla is Moloy Basu. Listen now to the sitar in the rag Darbari Kannada. Our artist Kajol Chattopadhyay.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग दरबारी कनाड़ा पर सितार वादन सुन रहे थे। कलाकार थे काजल चट्टोपाध्याय। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे मौलोय बासु। ये आकाशवाणी कोलकाता केंद्र की भेंट थी। यह रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: यू वर लिसनिंग टू अ सितार रिसाइटल इन द राग दरबारी कनाड़ा। Our artist this evening was Kajol Chattopadhyay. Accompanying him on the tabla was Moloy Basu. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम, हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत. अब आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शैली में सारंगी वादन. कलाकार हैं सरदार खां, राग है जौनपुरी. विलंबित गत एक ताल में निबद्ध है और द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है. संगत कलाकार हैं तबले पर रामस्वरूप रतौनिया. This is Ragam 24/7, an exclusive Indian classical music channel. Now listen to a Hindustani Sarangi recital by Sardar Khan. The rendition commences with the rag Jaunpuri. The accompaniment has been provided by Ram Swaroop Ratonia on the tabla.

अब आप सुनेंगे सरदार खां का सारंगी पर बजाया राग गांधारी, तबले पर संगत की है हफीज खां ने। नाउ लिसन टू द राग गांधारी बाय सरदार खां ऑन द सारंगी। तबला accompaniment has been provided by हफीज खां।

आप सुन रहे हैं सारंगी वादन, कलाकार हैं सरदार खां। यू आर लिस्निंग टू हिंदुस्तानी सारंगी रिसाइटल बाय सरदार खां। ये है रागम, हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे दादरा धुन। नाउ द आर्टिस्ट रेंडर्स अ दादरा धुन।

अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी सारंगी वादन। कलाकार थे सरदार खां। संगत कलाकार थे तबले पर रामस्वरूप रतौनिया। हर पल हर समय रागम के लिए ये थी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की भेंट। यू वर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी सारंगी रिसाइटल बाय सरदार खां। द अकॉम्पनीमेंट वॉज प्रोवाइडेड बाय रामस्वरूप रतौनिया ऑन द तबला। This program was contributed by All India Radio Bhopal for Ragam 24/7, an exclusive Indian classical.

0: This is Ragam 24/7 DTH in Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन DTH अनवरत भारतीय संगीत. आइए सुनते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत गिटार वन. कलाकार हैं दीपांकर राय चौधरी. इस कार्यक्रम में पहले सुनते हैं राग नट भैरव. तबले पर संगत की है भरत कुमार मिश्र ने.

अभी आप सुन रहे थे दीपांकर राय चौधरी का गिटार पर बजाया राग नट भैरव। ये अब सुनते हैं इन्हीं का बजाया गिटार पर राग कीरवानी। तबले पर संगत की है भरत कुमार मिश्र ने।

अभी आप सुन रहे थे दीपांकर राय चौधरी की गिटार पर बजाई राग मिश्र पहाड़ी धुन। तबले पर संगत की थी भरत कुमार मिश्र ने।

0: अभी आप फैयाज वसीफुद्दीन डागर का गाया राग भटियार सुन रहे थे, और लीजिए अब सुनिए विदुषी शर्मिष्ठा सेन का सितार पर बजाया राग अलैया बिलावल।
1: दैट वॉज राग भटियार सांग बाय फैयाज वसीफुद्दीन डागर। नाउ यू शिल हियर अ सितार रिसाइटल बाय विदुषी शर्मिष्ठा सेन। शी प्रेजेंट्स राग अलैया बिलावल।

0: अभी आप विदुषी शर्मिष्ठा सेन का सितार पर बजाया राग अलैया बिलावल सुन रही थी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: दैट वॉज राग अलैया बिलावल प्रेजेंटेड ऑन द सितार बाय विदुषी शर्मिष्ठा सेन। एंड विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम विच वॉज अ प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओ नमस्कार, रागम 24/7 DTH चैनल पर भक्ति संगीत के कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए भक्ति संगीत के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं दादा अल्लाह की इस भक्ति रचना से, जिसे गाया है कार्तिकेय गायकवाड़ ने। संगीत निर्देशन है रविंद्र खासनीस का।

दादा अल्लाह ने रची ये भक्ति रचना अभी आपने सुनी कार्तिकी गायकवाड़ के स्वर में। संगीतबद्ध किया था रविंद्र खासनीस ने।

कार्यक्रम की अगली भक्ति रचना है अशोक जी परांजपे की, जिसे गाया है प्रकाश घांगरेकर ने, संगीतबद्ध किया है जितेंद्र अभिषेकी ने।

अशोक जी परांजपे ने रची ये भक्ति रचना अभी अपने सुनी प्रकाश घांगरेकर के स्वर में, जिसके संगीतकार थे जितेंद्र अभिषेकी। कार्यक्रम की अगली भक्ति रचना सुनते हैं सरोज गोखले के स्वर में। ये रचना है संत नामदेव महाराज की।

संत नामदेव महाराज ने रची ये भक्ति रचना अभी आपने सरोज गोखले के स्वर में सुनी। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं संजीवनी जोशी और सहकारियों के स्वर में संत तुकाराम महाराज की ये भक्ति रचना।

गंगाधर महाम्बरे ने रची ये भक्ति रचना अभी आपने अरुणा कुबेर के स्वर में सुनी। भक्ति संगीत के कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं

संत एकनाथ महाराज की भक्ति रचना अभी आपने सुनी श्यामकांत जोशी के स्वर में। कार्यक्रम की अगली रचना है गदी माडगुळकर की, सुनते हैं समूह स्वर में।